0: the health minister, Balbir Singh, had gone to the university regarding some health program. But as he was there, the students gathered over there, the Democratic Students Organization, they confronted him and cornered him about a various range of demands regarding the Punjab University, especially the debt waiver. They said that the debt on the university should be waived off. Other than this, they also said the condition of the hostels is very bad. They wanted improvement in the condition of the hostels and other basic amenities. Other than this, they wanted that the fee hike should not be made. So there was a range of demands. Although the health minister said that it was not his department, it was the department of the education minister. But the students yet again confronted that he belonged to Patiala and the university is in Patiala. So it is his responsibility as well to look after that. And as the minister was there, the students started raising slogans against Punjab University, the Punjab government, and said that their agitation will continue till the government listen to their demand. So it was an awkward situation for the health minister, who had gone there for a departmental function, but was cornered by the students over there.
1: Right. So this indeed does come out to be very, very precarious, the situation there. It's at a crossroads, given the demands and the way the demands are being raised by the students. Unrest may follow, but again, that's too early to say. Right now, it's just them coming out to verbally protest about what they demand, which is the resignation at this given point of time of the minister. On that note, viewers, we are now shifting our focus to a neighbouring country. This is Nepal that we are speaking of. Explosive Nepal communal riots revelations that we are looking at, where Nepal Intel flags riot link of Pak ISI. Pak foments trouble in India's neighbourhood. Presence of Pak origin Maulana ahead of the riots is what has been flagged from the probe. Now, Mohammed Ilyas Ghuman camped in Sunsari before the riot revealed Turkish and Bangladeshi clerics at the border. 9 Bangladeshi clerics entered Nepal on tourist visas. Pak clerics movement near Bihar and UP border with cleric holding secret meetings in mosques and madrasas. 21 shot in that very episode. 3 dead in Nepal communal riots. Nepal's open border used for anti-India acts. Illegal funds for Nepal madrasas via Pakistan, Turkey, Qatar. That's the very route that the money trail followed for these very riots, for that matter, is what we're learning. Pankaj Das joining us from Kathmandu at this point to bring us more details about what has been revealed in the probe about these Nepal riots. Pankaj, a very good morning to you. Sabse pehle, ye kafi chintajanak khabar hai jo abhi sunne mein aa raha hai. Ye jo pura money trail tha, और फिलहाल जो आईएसआई के साथ लिंक्स पाया गया है, ये पूरा एक ऑपरेशन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लोग इन्वॉल्व थे और काफी सारे लोकेशंस भी इन्वॉल्व थे अगर देखा जाए तो. इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है?
2: बिल्कुल, इस बार जो नेपाल के सुनसरी जिला, जो बिहार से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, वहां जब दंगे हुए और वो दंगा पूरे जो वीरगंज तक फैला, करीब 10 जिलों में ये फैल गया सांप्रदायिक दंगा जो था. काफी उग्र प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. करीब आधे दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वहां पे. तो इन सबके पीछे जो है ये नेपाल की खुफिया एजेंसी जो है, उन्होंने जो होम मिनिस्ट्री को इनिशियल रिपोर्ट दिया है, उसके मुताबिक इसके पीछे जो है पाकिस्तान की आईएसआई एक बार फिर नेपाल में सक्रिय होती हुई दिख रही है. हम जानते हैं कि नेपाल में 90 से और 2000 के दशक में यहाँ पे आईएसआई काफी सक्रिय था, लेकिन बीच में बिल्कुल भी आईएसआई की बहुत ज्यादा एक्टिविटी यहाँ नहीं दिख रही थी. लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो लगातार नेपाल के उन इलाकों में जो भारत से सटे हुए वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे की ये जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे आईएसआई का लिंक जुड़ा हुआ है. क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड जो मौलाना है, जो मौलवी वहां से तुर्की होते हुए दुबई, कतार और गल्फ कंट्री से यहाँ पे नेपाल में आ रहे हैं, और सिर्फ वो उन्हीं इलाकों के मदरसों और मस्जिदों में जा रहे हैं जो भारत से सटे होते हैं. हम जानते हैं कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वो बिल्कुल ओपन बॉर्डर है और वहां हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है. तो ये सबसे ज्यादा चिंता भारत के लिए कि आखिर जो आईएसआई है, भारत के बॉर्डर जो ओपन बॉर्डर है, वहां पे क्यों इस तरह की जो डिस्टर्बिंग ये है, ये इसको

0: यू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं, गृहमंत्री देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता है। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Express flyover in Bhopal's MP Nagar was inaugurated in January 2025 by Chief Minister Mohan Yadav. Built at a cost of 121 crore rupees to ease traffic congestion in one of the city's busiest areas, the flyover today is riddled with potholes.
1: पूरी की पूरी सड़क पे दूर तक आपको दिख जाएंगे कि गड्ढे जो हैं बड़े गड्ढों से लेके छोटे गड्ढों तक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और जो गुजरने वाले यहाँ से दोपहिया वाहन है उनके लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। जो चौपहिया वाहन है वो तो यहाँ से निकल जा रहे हैं तेजी से फर्राटा भर के, लेकिन दोपहिया वाहन जो है वो अगर इसमें पड़ते हैं तो फिर उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये फ्लाईओवर के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहीं पर ये गड्ढा बना हुआ है।
0: The potholes are not limited just to the flyover. The condition of the roads under the bridge are no different.
2: काफी टाइम हो गया सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की। कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो, उनमें बैलेंसिंग नहीं देता, पलटते हैं। कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे।
0: The real question is, how does a road disintegrate so easily in less than 2 years? Why is there no proper maintenance? And who is sleeping at the wheel? With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.

मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन, वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री हु शॉट दोज स्टूडेंट्स, हु गेव द ऑर्डर to shoot those students, who blinded one of the students, who shot one of the students in the ear, who gave the order to beat the students with lathis with nails, who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign. Because he is culpable. And if he did not, he should resign. Because he is incompetent. Right? This is a... आपने मुझे सवाल पूछा. आप उनको interrupt करती हैं? नहीं नहीं जब वो बोलते हैं आप सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए जब वो बोलते हैं आप interrupt करती हैं? नहीं मेरा जवाब बोल दीजिए. आप interrupt करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते आप? हमें interrupt करते हैं, हमें 24 घंटा interrupt करते हैं, मगर उनको कभी interrupt नहीं करते आप. उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा

0: not. If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. Right? This is a... आपने मुझे सवाल पूछा. आप उनको interrupt करती हैं? नहीं नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए. आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप. उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए.
1: सर उनका जो
0: एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye, 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the, gaadi aati thi, jaati thi, 30 gaadiyan unke, students should know this, 30 cars around Amit Shah. Unke ghar ke samne jaiye, wahan pe matlab 1000 police wale khade hue hain ki koi bachcha na aa jaye. Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. थैंक यू.

0: The protests in Jharkhand over the exam irregularities continue. Despite police crackdown during the August 10th march and several other challenges being added to that very movement that they're continuing to be on. The massive student-led agitation is now nearing the three-week mark, while the hunger strike by activist Devendra Matho has entered its 12th day officially. The protest icon Matho, who's hospitalized because of his deteriorating health, has now written to the Ranchi civil surgeon, meanwhile, urging him to grant permission to return to the protest site even in this condition, saying that the students are agitating for their rights and this is not just a protest, but also a responsibility and a source of hope for him. The BJP continues to extend its support to the protesting students. Former Chief Minister Raghubar Das has threatened to go on a hunger strike if the Soraen government fails to recommend an order, a CBI probe into the alleged exam irregularities, which happens to be one of the crucial and key demands of the students at this point. The BJP is demanding an inquiry into the lathi charge as well and the use of water cannons against protesting students during the August 10th Vidhan Sabha Gherao March.
1: मैं गांधीवादी तरीके से लड़ते रहूंगा मैं उनकी बात तुम नहीं आऊंगा लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इस पर जो है सो संज्ञान ले क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है और पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए झारखंड इस झारखंड में आकर के आप लोग हमारे साथ इस आंदोलन को और आगे लेके चलिए इस आंदोलन को बड़ा कीजिए क्योंकि ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ
2: कभी भी जनता के हित से नहीं है ये कभी भी युवाओं के हित से नहीं है हम धन्यवाद देंगे राहुल गांधी जी को कि हमारी सरकार है उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने घटना चक्र की खंडन किया लेकिन भाजपा से पूछना चाहता हूँ तुमको तो सीख लेना चाहिए राहुल गांधी जी से बिहार में युवाओं को बर्बरतापूर्वक सलूक किया एक ही फोर्स से गोलियां आदि मारा सैकड़ों बच्चे रिटेन किए गए हॉस्पिटल एडमिट है सीरियस बच्चे हैं लेकिन कोई भी भाजपा के नेता कुछ नहीं बोलेगा जंतर मंतर में क्या नहीं हुआ एक भी बीजेपी के नेता ने इस संदर्भ में एक बयान तक नहीं दिया
3: बच्चे बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया जैसे बताया गया शाम में विधानसभा के गेट के बाहर हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जिसके समर्थन से सरकार चल रही है एक तरफ दिल्ली में छात्र के नाम पर छाती पीट रहे हैं वहीं झारखंड में हमारे बच्चे बच्चियां 20 दिन से हमारा अनशन में धरना में बैठे हुए तो खाली ट्वीट करके आंख मिचौनी का खेल कर रहे हैं
0: Note, this is an exclusive conversation that Rajdeep Sardesai, in fact, had earlier with Devendra Nath Matho himself about the hunger strike that he has undertaken. Listen in to what he had to share.
4: आप वहां लेटे हुए हैं अस्पताल में हैं दो दिन से आपको अस्पताल में रखा गया है क्या आप अब तैयार हैं इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए या ये जारी रहेगा
5: आज मेरा गार में दिन है और सदर अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी है आज जो 10 तारीख को विधानसभा में जो लाखों की तादाद में जो युवा आए और आंदोलन के साथ खड़ा रहे ये मेरे लिए सिर्फ आंदोलन नहीं है बल्कि उनको विश्वास और उम्मीद पर एक मेरा जिम्मेवारी है
4: आप कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है लेकिन वहां सरकार कह रही है कि वो आपकी मांगे ज्यादातर सभी मांगे पूरी की गई है कौन सी वो मांग है जो जिसके जो आप कह रहे हैं नॉन नेगोशिएबल
5: सरकार से मैसेज भेजा रहा है हॉस्पिटल में कई सत्ता पक्ष विधायक और मंत्री जन हमसे मिल रहा है हमने उनको कहा है जो मांग पत्र हमने सौंपा है उसमें से आप पत्र जारी कर दीजिए तो बहुत काम जाना गया अभी तक सिर्फ आश्वासन को और सिर्फ बयानों से मानी गई
4: नहीं, कौन सी वो मांग है जो नॉन नेगोशिएबल है? सीबीआई प्रोब या जितने भी एग्जाम्स जो जिसमें धांधली हुए सभी को कैंसिल करना है, क्या कौन सी मांग है जिसकी जिस पर आप बिल्कुल अड़े रहेंगे?
5: ये सरकार भले दावा कर रही है कि मैं 98% मांग पूरी कर ली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार 50% मांग भी नहीं मानने वाली है।
4: तो ये आंदोलन क्या आप हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ये आंदोलन है? पूरी जो सिस्टम है उनके खिलाफ आंदोलन है? हेमंत सोरेन खुद के खिलाफ है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप तो शिब्बू सोरेन को बहुत मानते हैं, उनके पोस्टर्स रखे थे। इज दिस अगेंस्ट हेमंत सोरेन या पूरे सिस्टम या गवर्नमेंट के खिलाफ?
5: देखिए, सबसे पहले हम लोग सिस्टम के शिकार हैं, तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सिस्टम सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सिस्टम सुधार में नाकाम साबित होगी, इतना हम सरकार से एजेंसी आएंगे। फिलहाल अभी तक हम सरकार के विरोध में नारे तक नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे सिस्टम सुधार में नाकाम होगी तो बिल्कुल हम लोग सरकार इस सरकार पर फिर उठाव फेंकने की बात करेंगे। जो सरकार किस काम की जो युवाओं को संतुष्ट न कर पाए।
0: On that note, viewers, we are wrapping up this segment right here and the bulletin this hour. But do stay tuned to India Today as we keep tracking all the top stories for you into the next hour. Thank you for watching.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: अरविंद, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सबसे पहले इस चीज पे ऑलरेडी जांच चल रही थी कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट तो है, पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है उस चीज के ऊपर जो टेरर नेक्सस बाहर रिवील हुआ था, जो बड़ा नेक्सस फैला हुआ था काफी स्टेट्स में, उसके ऊपर जांच चल रही थी. और अभी ये लिंक्स अलकायदा के साथ पाई गई है, आपके पास और क्या जानकारी है?
1: देखिए, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि जो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, AQIS, उसने नवंबर 2025 में रेड फोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट करवाया था. ऐसी जानकारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मिली है. आपको याद होगा कि लाल किले के बाहर एक फिदाइन अटैक हुआ था, एक कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें जो डॉक्टर उमर नबी है वो कार समेत उड़ गया था, 11 लोगों की मौत हुई थी. उस मामले में NIA अपने लेवल पर जांच कर रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में तो बड़े खुलासे हुए हैं कि जो AQIS है अलकायदा, उसने इस बम धमाके को अंजाम दिलवाया था. और ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप में अब बट चुका है अलकायदा, और छोटे छोटे ग्रुप में बटने का मकसद यह है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए. और इस मामले में भी जो रेड फोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी देखा गया था कि जो डॉक्टर नेटवर्क था, टेरर का डॉक्टर नेटवर्क, वो जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक उसने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था, और इसी वजह से उनको आसानी से एजेंसी नहीं पकड़ पा रही थी. लेकिन अब इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अलकायदा ही इन बम धमाकों के पीछे था, नंबर एक. नंबर दो, जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और खासतौर से टेररिस्ट, वो AI टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेरर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए. तो फिलहाल जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रिपोर्ट में रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और ये बताया गया है कि अलकायदा ही जो रेड फोर्ट के बाहर कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे था.
0: तो अरविंद, अभी फिलहाल जो कंट्रीज का नाम सामने आ रहा है वो है पाकिस्तान, और उसका नेटवर्क जो है अफगानिस्तान, या फिर आपका बांग्लादेश का भी नाम इस रिपोर्ट में आया है. पर अगर हम बात करें उस टाइम की जब इसकी जांच एकदम शुरुआत में जो डिटेल्स आई थी जांच से, तब तुर्की पाया गया था एक ऐसा कंट्री जहां पे ये लोग मीटिंग करने जाते थे. तो ऐसे नेटवर्क्स में बहुत सारे देश जुड़े रहते हैं शायद, जहां से मनी ट्रेल भी आता है, जहां से मॉनिटरिंग भी चलती है. तो इन देशों के अलावा और किसी ऐसे जगह की नाम रिवील हुई है?
1: बिल्कुल, देखिए जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खासतौर से बांग्लादेश में जो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट अलकायदा का जो विंग है वो पैर पसार रहा है और अपने स्लीपर सेल तैयार कर रहा है, जैसा आपने बताया तुर्की. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया था कि ये जो पूरा डॉक्टर टेरर नेटवर्क है, इनका हैंडलर अफगानिस्तान में भी मौजूद था, और वो अब एब्सकॉन्डिंग भी है. बाकायदा NIA ने उसे वांटेड घोषित किया है, जो हैंडलर है, और एक हैंडलर अफगानिस्तान में बैठा हुआ है. तो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटवर्क की बात अगर करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में फैला हुआ है. इंडिया में इसका मॉड्यूल भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बस्ट किया था. लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये विंग इतने छोटे छोटे स्लीपर सेल इसने तैयार किए हुए हैं और अलग अलग स्टाइल में ये टेरर अटैक करा रहा है, जिससे इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो गया है. रेड फोर्ट ब्लास्ट भी आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर में नेटवर्क बना, उसके बाद UP से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद तक फैला हुआ था, और ये नेटवर्क इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव इन्होंने इकट्ठा कर लिया था जिसके बारे में एजेंसीज को जानकारी नहीं मिली थी. जब जानकारी मिली उसके बाद डॉक्टर टेरर नेटवर्क के कई लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो डॉक्टर था उमर नबी, वो कार ड्राइव करके रेड फोर्ट के बाहर आता है और वहां पर जो सुसाइड अटैक है उसको अंजाम दे देता है.
0: जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, पर आप हमारे साथ बने रहिए. आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी. ये जो रिपोर्ट आया है इसमें ये जानकारी तो मिली है कि अलकायदा के साथ लिंक है, पर अरविंद अगर हम बात करें इस टेरर नेटवर्क की, ये टेरर नेटवर्क इतना ज्यादा गहरे तरीके से बेस कर चुका था और एक नहीं काफी सारे स्टेट्स के थ्रू इसका पूरा नेक्सस जारी था, ये एक काफी बड़ा चिंताजनक चीज इंफॉर्मेशन जो थी ये सामने आई थी। उस टाइम में बहुत सारे स्टेट से ऐसे ऐसे टेररिस्ट जो प्रिपेयर कर रहे थे अटैक्स के लिए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अभी आज के डेट में ऐसा कुछ और रिवील हुआ है, यूएन ने कुछ और इस रिपोर्ट में कुछ और वार्निंग्स दिया है कि ऐसे कुछ स्टेट्स में या फिर बॉर्डर स्टेट्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो इनका नेक्सस अभी भी काफी गहरी तरीके से बेस्ड है या फिर एस्टैब्लिश्ड है, ऐसा कोई रिपोर्ट आया है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ?
1: बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने बकायदा हिंट किया है कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इनका नेटवर्क फैला हुआ। और जैसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि अब ये अलकायदा और खासतौर से अलकायदा का जो सब कॉन्टिनेंट विंग है, अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनको एजेंसी जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये छोटे छोटे स्लीपर सेल ये बना रहे हैं।
0: जी अगर अरविंद, मुझे आपको आपको हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। व्यूअर्स, वी आर ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर उत्तर प्रदेश डीजीपी दैट इज। मिस्टर सिंह, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन इंडिया टुडे। दिस इज वेरी कंसर्निंग, द रिपोर्ट दैट हैज कम इन, गिवन द काइंड ऑफ टेरर प्लॉट दैट हैड बीन रिवील्ड इन द प्रोब दैट वॉज अंडर वे, एंड नाउ दिस यूएन रिपोर्ट लिंकिंग ऑल ऑफ दैट टेरर नेटवर्क, द अटैक ऑल ऑफ इट टू अलकायदाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेटवर्क एंड विंग।
2: गुड मॉर्निंग, यस इंडीड, इट इज वेरी वेरी डिसकंसर्टिंग एंड डिस्टर्बिंग टू से द लीस्ट। It is now the United Nations Security Council that has put its seal on the 10th November blast, linking it with Al-Qaeda India, AQIS, and also Ghazwatul Hind operating from Kabul and also having its cohorts and their allies in India. Dr. Umar Ulnavi, who was a former professor of medicine in Al-Falah University, was the kingpin. The 10th November was a blast killing 11 people. And also there were multiple terrorists right across the country from Saharanpur right up to Kashmir. Till now we probably understood that it was a remote and a motley assembly of sleeper cells. Now that the truth has come out, and the bitter truth has come out, is that it is Al-Qaeda India. And therefore alarm bells have been raised, and it is a wake-up call for India, the subcontinent and the world, that they were also planning not only this, that biological and chemical weapons, you may recall, that some doctors who had studied in China were operating from Hyderabad and Gujarat and creating a poison, a deadly poison, RITIN. Therefore, it is a time that we need to put our intelligence antenna right up and see to it that such suspicious activity do not go unnoticed, and all the cohorts of Indian Mujahideen or Al-Qaeda are also neutralized and taken account for.
0: Mr. Singh, you know, if we speak of the Al-Qaeda and its attacks, there had been a time when the Indian Intel Services, or for that matter, the NIA, all of our forces together in co-joint efforts had come up to tackle this threat quite well. But now with this threat, the Al-Qaeda threat resurfacing, with this bomb attack having been successful to an extent in Delhi, in the heart of the national capital, it's quite alarming. And as you said, the services need to be on high alert at this given point. How would you suggest that the services indeed do take this threat up and make sure that it's a co-joined effort among states, not just the national capital, and make sure that such systems are not even allowed to establish, like the Al-Falah University had come up?
2: I totally agree with you. Our agencies, whether it's IB, whether it's ROAW, whether it's NIA, have given an excellent account of themselves, including SSP Srinagar, who identified Dr. Rathar of Saharanpur on the basis of just a vague CCTV report. But now it has to be done on a war foot, and a resolute nation must come together in sharing intelligence and giving a befitting reply to the adversary.
0: Right. Mr. Singh, thank you for speaking to us on India Today. On that note, we also have SP Ved, the former DGP of Jammu and Kashmir. Mr. Ved, thank you for joining us on India Today. Very good morning to you. How are you looking at this very threat? It's very concerning, especially the first alerts that had come in were from Jammu and Kashmir, certain posters that had been put up, and then the operation then continued by our forces to unfoil this entire network that was being established across states in the country.
3: That's true. This was a we all seen how a doctor's module was used by the Pakistan establishment to create mayhem in Red Fort area of Delhi, which always remains crowded, and how a suicide bomber doctor from Kashmir blew him off there. I think the rest of the operation was very well conducted by this. I think a lot of credit should go to J&K police from a poster how the whole network was unraveled of doctors from not only from Jammu Kashmir Valley to Haryana's Al-Falah University and Lucknow, the connection of Faridabad and all those things we have all seen. And I think our agencies did a great job accepting one part of that. I'll say that this doctor was a suicide bomber, was able to cause a blast and blew him up. So I think otherwise this was a module which was actually, I would say, an operation of the Pakistan's establishment, how online these people are being radicalized and being used, so highly educated doctors, so highly paid in society. And what should be astonishing to the whole of security establishment, how these highly placed and highly educated doctors are getting radicalized. I think that should be a challenge for the whole security establishment and intelligence agencies of this country. But I think overall, the performance of the J&K police and the forces, the state police forces, and also NIA and intelligence agencies like IB have done a commendable job.
0: Right. And there is a bigger threat at this given point with AI-driven terror perhaps becoming the next challenge for mankind to, in fact, keep a track and ensure that such attacks don't take place. Mr. Baird, thank you so much for speaking to us on India Today. On that note, viewers, we are shifting our focus to more news coming in. It's an explosive Nepal communal rights revelation that we're bringing to you. Nepal Intel flags right link of Pak ISI. Pak foments trouble in India's neighborhood. Presence of Pakistan origin Maulana ahead of riots. Mohammed Ilyas Gumman camped in Sunsari before the riot is what we are learning about. What's been revealed now? Turkish and Bangladeshi clerics were at the border. 9 Bangladeshi clerics entered Nepal on tourist visas. Pakistan clerics movement near Bihar and Uttar Pradesh border. Cleric was holding secret meetings in mosques and madrasas. 21 shot, 3 dead in Nepal communal riots. Nepal's open border used for anti-India acts, illegal funds for Nepal madrasas via Pakistan, Turkey and Qatar. Those are the nations through which the money trail has in fact been traced so far. But very concerning in terms of information that we're learning about the latest riots that had in fact taken place in Nepal. And it comes in as a bigger warning to India as well, given that these are neighboring regions. Yet another threat in terms of terror activities going on near the border. On that note, we have more breaking news coming in. This is Raichur. Youth arrested for allegedly plotting unrest in India with foreign national, a 24-year youth. Mohammed Shahil has been arrested by the Raichur Sadar Bazar police for allegedly being in contact with an unidentified foreign national who was purportedly encouraging him to create unrest in India. According to police, Shahil, who ran a tea stall in Raichur, came into contact with the unidentified person through an Instagram account operating under the name Rana Bhai. Police alleged that Shahil was influenced by the account's posts and later established contact with the person through Instagram and WhatsApp. On that note, we have Sagar Ra joining us on the broadcast with more details on the same. Sagar, do take us through what exactly has the police probe revealed so far about this given person and the networks he was involved with.
4: If you notice that this person has been identified as Mohammed Sahil, and he was actually on social media and he met someone called Rana Bhai on social media where he started to interact with them. And if you notice that Rana Bhai used to post against the Indian government, anti-government and anti-Indian sentiment. and he used to follow that and he started to report. And thereafter, he used to have a conversation with him where he has asked that by mistake, Bitcoin trial. And he responded to him stating that you should mobilize more people and you should go against the government in the country. And the police which was monitoring the entire activity have noticed that this fellow was running a tea stall in Raipur and subsequently taken to custody and investigating further.
0: Right, Sagar, thank you for bringing us all of those details. Indeed, it comes out to be very concerning, all of these activities that we're tracking on India Today. And on that very note, viewers, we will be wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned, as on the other side, India's Agenda is the show that you'll be following with Anjali Pandey with all the latest stories and updates coming in for you. Thank you for watching.
5: Firozabad is synonymous with glass bangles, but today its story goes far beyond bangles. Glass products made here are reaching more than 100 countries, from Europe and America to Germany and Japan. Behind this global journey is a centuries-old craft now supported by ODOP. One district, one product. Under ODOP, businesses have received support through loans, subsidies, training and technical assistance, bringing together traditional skills, new technology and larger market. And the impact goes beyond business owners. Under the ODOP training scheme, 1,778 people have been trained, while 5,550 beneficiaries have received support under the Vishwakarma Shram Samman Yojana. Over the past 12 years, government schemes have reportedly supported more than 11,000 beneficiaries, including 624 under Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana, 1,996 under Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana, and 627 under PMEGP. Firozabad's glass is no longer just a traditional craft. It represents skill, employment, entrepreneurship, and a growing global market. Once known simply as the city of bangles, Firozabad is now moving towards becoming a global hub for India's glass industry.

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते कि शायद चर्चा होगी विस्तार से, तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं गृहमंत्री जी पे, देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: Some more news coming in. Parliament washout all but confirmed now. Lok Sabha to be adjourned indefinitely post 11 a.m. No debate, only derailment in store. Speaker to deliver address and to end the session after that. So final day, no Amit Shah and Rahul Gandhi face off in Lok Sabha, despite Amit Shah saying that he's ready for a debate in the House. But Rahul Gandhi claiming that we are not interested in lectures. So no face off between the Home Minister and the Leader of Opposition in Lok Sabha will be witnessed as the Lok Sabha will be adjourned sine die at 11 a.m. today. This is what we are learning. So the logjam continued and today was the last day, and we were discussing what can be expected, but now it's almost confirmed that there will be no face-off in the House even today, and the Lok Sabha will be adjourned indefinitely post 11 a.m. There will be no debate, only derailment, and the Speaker will be delivering his address, and then the session, the monsoon session, will come to an end. So even on the final day, no Amit Shah and Rahul Gandhi face off in the Lok Sabha. Remember, the opposition for weeks now has been demanding a statement from the Home Minister on the July 20th student protest. Along with that, they're also demanding a discussion on the Ram Mandir donation theft. And every day there were protests outside the parliament at the Makar Dwar staged by the opposition. And in the last few days, we've even seen the NDA MP staging a protest against the opposition over the Jharkhand protest, the use of force by cops in Jharkhand. And there had been a protest versus protest that had been going on this week at the Makar Dwar. But today was the last day of the monsoon session. And what we're learning is that at 11 a.m., after 11 a.m., the Lok Sabha will be adjourned indefinitely. And there will be no face-off between the Home Minister and Rahul Gandhi. It was expected that there could be a face-off because Amit Shah has had clearly stated that the government is ready for a discussion and that he's ready to speak. But the opposition was adamant that we want the answer on who authorized the firing on the student protesters. And along with that, we also want a discussion on the Ram Mandir donation theft case. Let's also take a look at this report by my colleague Amit Bhardwaj.
1: And the session has been completely washed out after protest versus protest visuals coming from the parliament. And this visual we are bringing you from right outside the parliament's Makar Dwar. The ruling party MPs are protesting on the stairs of Makar Dwar against Jharkhand government and the allies of the Congress party, saying that a paper leak happened in exam irregularities happened in Jharkhand, crackdown on students happened in Jharkhand. And on the other side, the second visual is coming from the opposition's protest. So these are the opposition party MPs protesting. They have the bodies of indicating Chanda Chori issue. They are holding dolls, monkey dolls in their hands, giving a message, you know, attacking the Home Minister and Prime Minister as well. Sir, गोरी गन्ने के बाद आज आप लोग मंकी डॉल्स लेके आए हैं, क्यों?
2: वो छात्रों का नारा है, 56 इंच का छोटा बंदर, उसी को दोहराया है।
1: So the attack is also on Prime Minister, Home Minister. Opposition continues to seek statement of Home Minister on the crackdown of on the students on July 28th. And on the other side, the ruling party MPs are raising the issue of Jharkhand students. This is Amit Bhardwaj, reporting for India Today from Parliament Complex.
0: So there you see the opposition MPs are protesting at the Makar Dwar, and you can see them carrying a monkey doll today. And this is related to the slogan that was coined by the student protesters while the protest, the Jantar Mantar protest led by the CJP were on. And the slogan was related to 56 inch ka bandar. And hence these monkey dolls are now being carried by the opposition leaders. We've already seen the Aam Aadmi Party leaders changing their profile pictures on social media platform X, changing it to a monkey's photo. And now even the opposition MPs, and you can see Pawan Kheda carrying this monkey doll at the Makar Dwar while they protest against the government and demand answers from the Home Minister. But now this monkey doll is being carried. This is related to a slogan which was coined during the students' protest. It was against the Prime Minister, and there was a monkey reference against the Prime Minister, and now the opposition MPs carrying this monkey doll too on the last day of the monsoon session. My colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, वैसे तो रोज प्रोटेस्ट चलते आ रहे थे, ऑपोजिशन एमपीज जो है मकर द्वार पे रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लेकिन आज जो एक चीज अलग देखने को मिली, ये मंकी डॉल्स के साथ आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया है।
3: देखिए, कहीं ना कहीं दोनों ही जो है एक तरीके से जो आंदोलन है उसका राजनीतिक तौर पर जो है वो फायदा लेना चाहते हैं। विपक्ष जो है वो जंतर मंतर पे जो सीजीपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया उसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, और सत्ता पक्ष जो है जो झारखंड के रांची में हुआ है छात्रों का आंदोलन जो वहां पे पेपर लीक के मामले को लेकर हुआ है उस पर जो है वो विपक्ष पे सवाल खड़ा कर रहा है। और इसी तरीके डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो अपने अपने प्रोटेस्ट को जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष करता है, और दोनों ही एक दूसरे के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का आंदोलन है उसको लेकर क्या दोनों ही पक्ष अगर चर्चा चाहते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा के लिए अपनी अपनी तरफ से ये कह चुके हैं कि हम सब चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ये कहता है कि गृहमंत्री आके स्टेटमेंट दे रहे, गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि सार्थक चर्चा हो जाए और सभी संसद सदस्य उसमें भाग लें, मैं चर्चा के दौरान मौजूद रहूंगा और सभी का जवाब दूंगा। अब सवाल यह है कि अगर सहमतियां हैं, सहमति मतलब एक एक तरीके से दोनों ही पक्ष जब चर्चा चाहते हैं तो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग आंदोलन को जो है समर्थन करते नजर आते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम दोनों पक्ष कर रहे हैं, और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। अब देखना यह है कि दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष इसको संसद से सड़क तक कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि छात्रों का आंदोलन तो झारखंड में है अभी, और विपक्ष इस पूरे आंदोलन में किस तरीके से रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, सत्ता पक्ष ये कहता है कि अगर आप प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, तो फिर वहां पर जो हेमंत सोरेन सरकार ने वहां पर लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस का यूज किया है, उसके खिलाफ आप जो है समर्थन क्यों नहीं वापस ले लेते। अपने अपने तरीके से छात्र आंदोलनों को समर्थन देना और उनको लेकर संसद के अंदर हंगामा करना और संसद में गतिरोध बनाने का काम जो है दोनों ही पक्ष कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं।
0: जी हिमांशु, कल किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर जो विपक्ष है वो तैयार हो जाता है डिस्कशन के लिए, अमित शाह ने जैसा कि बोला कि वो 3 बजे बोलने के लिए तैयार है, तो विपक्ष अगर तैयार हो जाता है तो इस सेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष अब कह रहा है कि आखिर के 2 से 3 दिनों में क्यों याद आया ये डिस्कशन करना, इतने हफ्तों से जब विपक्ष मांग कर रहा था तब क्यों नहीं सरकार ने डिस्कशन के लिए अग्री किया।
3: देखिए, सवाल वही है, जब संसद का सत्र शुरू हुआ 20 जुलाई से, तब से ये मांग है कि गृह मंत्री जो आए जवाब दे, चर्चा हो इस विषय पे, लेकिन सरकार अंतिम 3 दिन में इसके लिए तैयार नहीं। तब विपक्ष ये कह रहा है कि आप जो है राम मंदिर चंदा चोरी पे भी चर्चा कीजिए। जब सरकार ने कहा हम दोनों मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि लाठीचार्ज और टीयर गैस और बैलेट गन का यूज करने का आदेश आपने दिया या किसी और ने, तो इसको लेकर अब जो है बात लड़ गई है। दूसरा, क्योंकि हंगामा हो रहा है, और आज हमारे को जो अभी तक जानकारी है आज 11 बजे लोकसभा में पेपर ले के बाद जो है इसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा इस मानसून सत्र को, और उसके बाद सरकार तय करेगी कि डिलिमिटेशन बिल को किस तरीके से लाना है, कब लाना है, क्या कोई स्पेशल सेशन बुलाना है, ये तमाम इश्यूज पर चर्चा सरकार करेगी विपक्षी दलों से बातचीत के बाद। लेकिन इतना तय है कि ये पूरा सत्र जो है वो छात्र आंदोलन के नाम पर जो है वो भेंट चढ़ गया, चाहे वो जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन रहा हो या फिर झारखंड के रांची में।
0: जी हिमांशु, हमारे साथ बने रहिए। द ऑपोजिशन एमपीज आर प्रोटेस्टिंग एट द मकर द्वार करंटली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग अ मंकी डॉल। लेट्स टेक अ लुक एट द स्लोगन्स दैट आर बीइंग रेज्ड बाय द ऑपोजिशन एमपीज।
4: 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर, छप्पन इंच का छोटा बंदर।
0: So this was first coined by the student protesters during the CJP-led protests. This was a slogan, Chappan Inch Ka Chota Bandar Bal Narendra, which has been tweaked by the opposition MPs, and now they are raising slogans, Chappan Inch Ka Chota Bandar, Jaldi Aao Sadan Ke Andar, holding that monkey doll, which is an attack at the Prime Minister. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से, तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं गृहमंत्री जी पे, देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृह मंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ओपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ओपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ओपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी हैं उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओ का दर्द मैं समझ सकता हूं, कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो। इसलिए जो सीनियर है उसको

0: मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी के ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक ज़माने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर के देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज़ वाले। उस समय तो लाइव टीवी नहीं थे और वो सोशल मीडिया नहीं थे, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग मीडिया का इतना तगड़ा था कि अगले दिन हमारा क्या रिपोर्टिंग होगा। अब तो हेडलाइन का तलाश में सब चले गए हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग डिबेट डिस्कशन का जो कोर इश्यू है, उससे भी एमपीज भी बहुत दूर हो गए। तो आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बार काफ़ी जो गतिविधि में मीडिया ने कोई ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे, तो इसलिए मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
1: उनके क्वेश्चन होंगे?
0: क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आज तक। ग्यारह बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए, टोटल बिल 12। लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुए। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया, और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। बात में बताइएगा
2: सर, डिलिमिटेशन को लेकर?
0: नहीं नहीं, अभी भविष्य का बात अभी मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों से वार्ता करूंगा।
1: वर्तमान में जियो।
0: हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं।
2: हाँ,
0: नहीं नहीं, आप भविष्य का सवाल पूछ के आज के महत्व को खत्म कर रहे हैं। आप छपेगा ही नहीं आज का, फिर आप तुम फिर वो छपेगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो हंगामा करके बात करो ना। तो ओपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग ओपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना? मैं करूँगा फिर, ये तो विषय दैवाद होता है।
3: And yes, that's a statement that has come in from Kiran Rijiju as part of this news conference, where he said that the government wanted debate, but the opposition fled. He said that this is the first ever opposition that runs away from debate, saying that the opposition said that they will not listen to ministers. Also adding that this is a new law to parliament debate, where the opposition MPs just believe in disruptions. As new MP, we would spend time in the house, but all they resort to is sloganeering on the roads and not hold a constructive debate inside parliament. Kiran Rijiju saying that the hangama is not good for new Congress MPs, saying how will the new MPs even learn if all they witness in the parliament is uproar? That's the question that the government is now asking as they corner the opposition on how they were willing to have a debate on the key issues, on all the questions that the opposition wanted to ask, but not just did they block that debate. Rather, these constant disruptions is not setting a good example for the young MPs as well. Kiran Rijiju in that statement against the opposition, saying that this is the first ever opposition that ran away from debate. Piyush Mishra joining us on the phone line. Piyush, an all-out attack where the government is also setting the narrative to say that if the monsoon session has been a washout, as it is because of the opposition, but questioning the opposition on why run away from the debate, saying that this is setting a bad example.
4: Well, that's right, Suresha. Remember that the government has been requesting opposition to come on the floor of the house and have a discussion, and that's what the Kiran Rijiju has also reiterated, that the monsoon session has been complete washout because of the opposition political parties. We take it that government was always of the EU are having discussion, and that's why not only is parliamentary affairs minister going to review, but also Mr. Amit Shah, gave an open offer to opposition political parties to have a debate on the issue of not only Jantar Mantar, but also all the issues concerning the student protest across the country. But no discussion happened, and now the decision is waiting that this election is completely washed out because of the kind of discussion and chaos which was created by the opposition political parties. Now it remains to be seen how the opposition is going to react on this. We have also been speaking to various MPs from the opposition. They were of the view that government should have, in the initial days itself, allowed to hold a discussion on the issue of Jantar Mantar, on the pellet gun which was fired at the students. And also they should have led the discussion on Ram Mandir issue also. But government was not of the view of holding this discussion. You would also remember that in the last week of a monsoon session, PM Rijiju made an open offer to which opposition never agreed. So now, as we are speaking, there was complete washout of monsoon session. Only discussion on anti-public amendment bill happened. That was happened for around 20 to 22 hours. And apart from that, no discussion on any important bill happened, which is certainly suggests that how this entire session was a complete washout.
3: Piyush, many thanks for putting that into perspective. Let's once again listen into that statement that was made by Mallikarjun Kharge earlier.
5: प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था, सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो, उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं, ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी.
3: On that note, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: The Jharkhand protest is not just about exams. On the streets of Ranchi, it's a protest over jobs, vacancies and years of waiting. For thousands of young Jharkhandis, government recruitment has become a cycle of preparing, appearing, waiting and starting all over again. India Today has been on the ground speaking to protesters at the heart of this agitation. And behind the anger over JPSC-JSSC irregularities lies a much bigger crisis. The crisis of jobs. 26,001 assistant teacher vacancies were announced. Exams were held for it in 2024. 2 years later, appointments still remain incomplete. 9,000 TGT vacancies were announced in 2016. And these posts were abolished in 2025. For an aspirant, every vacancy is a chance. But protesters say in Jharkhand, even that chance has become uncertain.
1: हम 20 साल से परीक्षा का तैयारी करते हैं.
2: कितने साल से करी है आप?
1: 20 साल से कर रहे हैं. मेरा 39 साल हो गया है. मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालिफाई किया. सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया. इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है.
0: And the problem is not limited to the education sector. 5,000 police vacancies were announced in 2023, 4 years after the last exam. But these exams were never held. Thousands of young men and women prepare for these posts, often for years. And for those waiting against an age limit, every year matters.
3: तो मैम ये वैकेंसी आया ही नहीं और मेरे पिताजी तो चले गए बट ये सपना सपना ही रह गया. अभी हमारा मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे.
2: अभी कितना एज हो गया
3: मैम? मेरा अभी 28 हो गया मैम. तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक हो गया सब कुछ. और अभी क्या ही मैं बताऊं, जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली. छोटा से छोटा पोस्ट भी यहाँ पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है. तो कैसे बिलीव करेगा मैम? हम लोग यहाँ के मूल निवासी है. अब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है.
0: The vacancies that candidates wait for are often the difference between staying in the race and being pushed out of it.

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
4: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन। Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
3: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
5: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
3: India first, where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
3: News Today, exclusives that shape the headlines.
7: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
3: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं, गृहमंत्री देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृह मंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: According to sources, the speaker did not deliver the customary address today in view of the uproar in the Lok Sabha. This is breaking news that we're bringing you from the Parliament of India. The speaker did not give his customary address while adjourning the Lok Sabha Synodai because sloganeering had begun even before the House commenced proceedings. This indicated that the atmosphere was not conducive to the speaker's address, and that is why immediately after the proceedings began, the national song Vande Mataram was sung and the House was adjourned synodai. The Rajya Sabha monsoon session is functional. Chairman C.P. Radhakrishnan has said regarding the Rajya Sabha function that the Rajya Sabha functioned only for 37.49 hours with productivity of just 39.17%. In fact, he says that we had the opportunity to raise 285 questions, 380 zero-hour submissions, 380 special mentions, but sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could actually be taken up. Let's listen into what the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju had to say on all of this.
1: चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है. लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है. राज्यसभा में 39%. राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया. तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%.
2: जनता मंत्र पर जिस प्रकार से एक माहौल बना और पूरे देश भर में जो माहौल बना उसके कारण सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, विवश हुए और एक ऐसा संशोधन पेपर लीक के मामले में एक ऐसा संशोधन लाने के लिए विवश हुए जो बिल वो आज से दो साल पहले ही 2024 में लेके आए. लेकिन उस बिल पर दो दिन की चर्चा हुई. अफसोस की बात कि वो उस दो दिन की चर्चा में हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए. राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी.
0: Alright, we just heard from Kiran Rijiju and Gaurav Gogoi, both the government and the opposition talking about how the parliament session has essentially been a washout. But while the government is saying that the opposition did not let the parliament work, the opposition is saying very clearly that there were demands being made, there were questions being asked, which the government has skipped over. Aishwarya Paliwal is joining me on this story. Aishwarya, Lok Sabha adjourned synodai. We've seen this monsoon session being washed out, really. What are we expecting now? What have you seen in the parliament this morning? And whatever happened to the special discussion that was supposed to happen in the parliament with the Home Minister?
3: Well, Anisha, that was just a hope. It was the government that was hoping that the opposition, in fact, will agree for a long discussion because they did say that today was the last day and this was the hope that they had. But the opposition was very, very clear. They were clear that they just have one question and they want answer for that one question. They do not want, the Home Minister to speak at length. The Home Minister, however, and the government at large, they believe that, explaining what happened on the 20th of July, that actually needs long hours of discussion, and just one statement will not be able to summarize what had happened on the 20th of July. So this tug of war continued from day one till the last day. In fact, today also we did see how the NDA MPs being led by Nishikant Dubey and the other MPs, the opposition MPs, all of them actually came face to face right at the Makar Dwar, and the last day was also marred by massive protests by the opposition, Anisha.
0: All right, thank you very much for that, Aishwarya Paliwal. We've seen a very, very unproductive parliament this time, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The data that the Lok Sabha chairperson as well as the minister have shared very clearly shows just how little work was actually done, even though several bills have been passed by voice vote. Monsoon session has effectively been washed away. The session, which started on July 20th, mostly saw a ruckus and sloganeering inside the house, leading to adjournments within minutes. Both houses have been adjourned sine die now. Lok Sabha today started with a full rendition of the national song Vande Mataram, with the entire house, including the opposition MPs, standing while the song was being sung. The lower house, the Lok Sabha, was adjourned right after the national song. Both the Treasury benches and the opposition are now blaming each other for the washout of the Washington session. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju lashed out at the opposition, saying government wanted debate, but the opposition fled, calling it the first ever opposition to run away from debate. The minister, in fact, called it a new low in parliamentary debate. The opposition, meanwhile, hit back at the government, saying that Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah did not attend parliamentary proceedings, adding that they have no respect for the parliament. Let's listen in.
1: एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ओपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया। डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह से उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।
4: मानसून सेशन और सजा को भी और सिंडिकेट जो चलता है पेपर लीक का, उसको भी एड्रेस करने की कार्रवाई की गई। बस उसी पर एक बहस हुई, फिर उन्होंने नंदन निरकेनी की अगुवाई में एक बड़ा सा हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एग्जाम रिफॉर्म, नीट रिफॉर्म को लेकर। ये सब चल रहा है, एकाएक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी मांग ऐड कर दी गई है। सरकार चर्चा को तैयार है का नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये चला, इसको बनाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन। तो कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं, पुलिस में जो घटना हुई एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार हैं। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए, तो उनके दो शब्द विचार फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृहमंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है, जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार हैं, 24 घंटा बैठने को तैयार हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए, उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या, इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री एंड पार्लियामेंट विल नॉट रन बिकॉज अंडर द प्रेशर ऑफ योर एरोगेंस, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट एंड एक्सेप्शनलिज्म, कि आई विल डू एनीथिंग इन माई ओन वे, माई वे और हाई वे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं, इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हमने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है आप, आर यू होल्डिंग एनी पोजिशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने, गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें, जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है ना? तो एक तमें तो कहते हैं कि सदन जितना आपका उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, और फिर कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी जाती है, तो ऐसे कैसे चलेगा आप? तो बाकी मैं बैनर पोस्टर की बात तो करते ही नहीं, आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज देश को ये समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। आई वुड लाइक टू रिपीट, that Mr. Rahul Gandhi is irresponsible. Rahul Gandhi is yet to mature as a leader in the politics of the country. Rahul Gandhi is delinquent. Or Rahul Gandhi has a great sense of arrogance and entitlement and exceptionalism. कि जो मैं कहूंगा वही होगा. और एक बात हमने पहले भी कही थी, सरकार में भी कहा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है. अच्छा होता अमित शाह की बात सुनते तो जवाब पूरा दिया जाता. हम लोग भी बोलने के लिए आतुर थे. मैं तो आग्रह किया था थोड़ा सा युवराज के भाषण का जवाब मैं भी देना चाहूंगा माननीय गृहमंत्री के पहले, लेकिन हाउस चलने नहीं दिया. तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो उसको निकाल रहे हैं. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं. ये चिट्ठी आप लोगों को मिली होगी जो माननीय गृहमंत्री जी ने लिखा था स्पीकर साहब को. हम आपके लिए उसको फिर पढ़ना चाहते हैं. आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको भी थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा का छात्र आंदोलन पर चर्चा की सहमति दी थी. मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह के पूर्व ही संसद के वर्तमान सत्र में रोकथाम के लिए संशोधन बिल आया है. मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर अपनी आपसी सहमति से आज जितने समय जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें. मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग देना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं. ये उनके बाकी मैंने रेलेवेंट वाक्य को पढ़ा है, फिर भी नहीं. तो माई वे और हाईवे, सदन हम नहीं चलने देंगे. सदन हमारी मर्जी से चलेगा और सदन में वही होगा जो हम चाहेंगे, मगर जनता हमको वोट नहीं दे. राहुल गांधी की पूरी राजनीति है, सदन हमारी मर्जी से चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सदन में हम बहस नहीं होने देंगे भले ही जनता हमको वोट दे या न दे. ये एक कुल मिलाकर के मामला है. तो हमें लगा कि देश के सामने इस विषय को लाना चाहिए, तो हमने लाया. अब हम कोई प्रश्न के लिए तैयार हैं. थैंक यू. वैसे एक बात जरूर है कि आज जानकारी थोड़ा मैं देना जरूरी है. हम यहां आते आते मालूम हुआ कि पंजाब में रूरल लाइवलीहुड मिशन एग्जाम में अनियमितता के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा. और यह है फार्मेसी एग्जाम रिजल्ट को रोक दिया गया है. तो केजरीवाल जी यहां बहुत सवाल उठा रहे हैं, तो वहां जो बार बार कहानी आ रही है इसके बारे में क्या कहना है. झारखंड के बारे में हम लोग बोल ही चुके हैं कि यहां चिल्लाते हैं सदन नहीं चलने देते. राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी के कंधों पर झारखंड की सरकार चल रही है, वहां बच्चों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, परेशान हो रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और आप खामोश हैं. सिर्फ मैंने कह दिया तो कार्रवाई क्या हुई, यह सवाल है. धन्यवाद.
5: मोहित भट्ट.
6: No proper debate bills are being passed because of the ruckus by the opposition. Secondly, instead of debate, we saw threats by the opposition. Today, Congress party came up with a monkey balloon and objectionable statements were made against Prime Minister Narendra Modi in their protest. How do you respond to those?
4: It is condemnable. We have seen that. If that is the level of Samajwadi party and Congress party, I can only tell
0: you. We just heard the former law minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad castigating the Congress party, castigating Rahul Gandhi over the uproar in the parliament, saying that, as the BJP and the government have been saying, that the opposition did not let the parliament function at all. In fact, Ravi Shankar Prasad also pointing out that there have been paper leaks and interventions in Jharkhand and Punjab as well. So this paper leak issue clearly is going to be a major political flashpoint, even as the parliament itself has been adjourned sine die. On that note, it's time for me to take a very short break. Mornings and updates continue on the other side. Keep watching India Today.

0: Tourist flyover in Bhopal's MP Nagar was inaugurated in January 2025 by Chief Minister Mohan Yadav. Built at a cost of 121 crore rupees to ease traffic congestion in one of the city's busiest areas, the flyover today is riddled with potholes.
1: पूरी की पूरी सड़क पे दूर तक आपको दिख जाएंगे कि गड्ढे जो हैं बड़े गड्ढों से लेके छोटे गड्ढों तक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और जो गुजरने वाले यहाँ से दोपहिया वाहन है उनके लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। जो चौपहिया वाहन है वो तो यहाँ से निकल जा रहे हैं तेजी से फर्राटा भर के, लेकिन दोपहिया वाहन जो है वो अगर इसमें पड़ते हैं तो फिर उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये फ्लाईओवर के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहीं पर ये गड्ढा बना हुआ है।
0: The potholes are not limited just to the flyover. The condition of the roads under the bridge are no different.
2: काफी टाइम हो गया सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की। कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो, उनमें बैलेंसिंग नहीं देता पलटने, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे।
0: The real question is, how does a road disintegrate so easily in less than 2 years? Why is there no proper maintenance? And who is sleeping at the wheel? With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.

0: SEBI and NSE advice, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
1: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: न्यूज़ ट्रैक, वेयर द वॉइसेस दैट ट्रूली मैटर स्पीक।
5: व्हाई इज द कांग्रेस पार्टी इंसिस्टिंग ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान?
6: इररिस्पॉन्सिबिलिटी, द गवर्नमेंट्स फेलियर टू सिक्योर एग्जाम्स एंड डिलीवर जस्टिस टू स्टूडेंट्स।
4: The real newsmakers and global thought leaders driving change across India and the world.
7: The former IMF executive director, Sujit Bhalla, says that this is factually incorrect.
8: Resign and go. Who are you telling this?
4: Exclusive conversations, unfiltered insights, straight from the biggest names and power corridors. Every night, we deliver what matters most.

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से, तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं है, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं गृहमंत्री जी पे, देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: थ्रू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
3: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन, Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
2: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
4: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
2: India first, where decades of experience speaks.
5: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
2: News Today, exclusives that shape the headlines.
6: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
2: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: How many of you take Magnesia at night? क्या लेती हो रात को सोने के लिए?
1: कुछ नहीं देखते।
0: रील किसकी रील देखती हो?
1: आपको
0: जूही, what do you do for sleep?
1: मैं ना जाती हूँ, नींद आ जाती है। अगर इंसान थक के जाए तो ये सब नाटंकी नहीं होगा।
0: Every second wellness reel is telling you about Magnesium. They say it'll fix your sleep. They say jodo ka pain chala jayega, sar ka dard chala jayega. Does that really hold up? Let's tell you in this video. We've spoken with Dr. Biplav Das, Director of Neurology at Batra Hospital, New Delhi. Now, magnesium, remember, is one of the several minerals your body runs on. It's crucial for mood and brain function. It balances blood sugar, regulates blood pressure, and also moves calcium and potassium in and out of your cells, which is what keeps your heartbeat in rhythm as well. So, magnesium ye sab karta hai, par iska sleep se kya lena dena hai? Here's story number one. A systematic review pooled 3 trials on magnesium and insomnia in older adults. 151 people across 3 countries. The pooled results actually showed people fell asleep about 70 minutes faster on magnesium than a placebo. That sounds promising, right? Except that the reviewers rated the evidence low to very low quality with moderate to high risk of bias. The entire groundwork on which magnesium is being sold as a sleeping pill is shaky. अब सुनिए स्टोरी नंबर टू. मैग्नीशियम के एविडेंस है कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और ये सारी चीजें स्लीप की क्वालिटी को इंपैक्ट करती है. तो मैग्नीशियम आपके क्रैम्स में हेल्प कर रहा है, आपकी रेस्टलेसनेस में हेल्प कर रहा है, स्लीप में नहीं, विच इज अ बाय प्रोडक्ट. सो बिफोर यू क्रेडिट मैग्नीशियम फॉर द बेटर नाइट, आस्क योरसेल्फ, इट इज एक्चुअली फिक्सिंग योर स्लीप और इट्स फिक्सिंग समथिंग एल्स. But the most important thing about magnesium that nobody tells you, that not all magnesium is actually equal. Magnesium glycinate is well absorbed. Citrate is also well absorbed, but it can upset your stomach, which is why it's often used for constipation. Also, magnesium oxide is cheap and common, but your body barely absorbs it. So the magnesium on the label doesn't guarantee magnesium in your body. Kitna khana hai is also very important. If you're having more than 350 mg a day, you have a risk of diarrhea, nausea, even cramping. Also, agar aapko koi kidney disease hai, agar aap kisi antibiotics par hai, to aap please ise skip karein. Agar aap koi aur blood pressure ki medication le rahe hain, to apne doctor se pooch kar magnesium add karein. Just because ye supplement hai, doesn't mean aap ise khana shuru kar denge. Magnesium kiske liye hai? देखिए, अगर आपकी कंफर्म्ड डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम में तो प्लीज इसे लीजिए, बट ओनली आफ्टर यू हैव गॉटन अ ब्लड टेस्ट डन एंड योर डॉक्टर टेल्स यू दैट यू आर एक्चुअली लो इन इट. और ये रील उस इंसान के साथ शेयर करना चाहिए जिसको रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसको लगता है कि मेलाटोनिन और मैग्नीशियम खाने से सब फर्क पड़ जाएगा. उस पर भी हमने एक रील बनाई है, वो जाके देखिए.

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं। जिस तरह से हंगामा करना, जिस तरह से पूरा सदन को वॉश आउट कर दिया, जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, यही मांग थी और इसको गृह मंत्री जी ने समय दे दिया 3 बजे तक, जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर साहब ने भी कहा था। तो इससे साफ है कि इनके पास कोई जवाब सुनने के लिए नहीं है। वो समझते हैं कि शायद चर्चा होगी विस्तार से, तो रांची की भी चर्चा होगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा होगी, कर्नाटका की भी चर्चा होगी, केरला की भी चर्चा होगी, आखिर वहां भी तो परीक्षाएं लीक हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये विषय किसी राज्य का नहीं है, किसी दल का नहीं, इसीलिए कठोर कानून बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से जो भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता होकर के कर रहे हैं गृहमंत्री जी पे, देश के गृहमंत्री हैं जिन्होंने धारा 370-35 समाप्त करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने नक्सल बात को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया उसको पूरा किया, और आज देश की जनता आज के इस राहुल के बयान से जान चुकी है कि कौन भाग रहा है। आज विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से, गृहमंत्री के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि उसको जब एक एक जवाब मिलेगा तो इससे नहीं चलता। अगर आप न भी आप सहमत हो तो सदन तो चलने दें।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: को सीजीएल परीक्षा जो है वो हम बोले रद्द करिए जेएसएससी ये टीडीपीएल के द्वारा। हमारे तीन मांग है एकदम स्पष्ट, जो भी पूरे देश के लोग देख रहे हैं, हम लोग कोई हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा कभी नहीं बोले, हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग जो है सिर्फ यही कहेंगे कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा जेपीएससी में ली गई है तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए और जेएसएससी की तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए, चाहे तो वह पीजीटी हो, चाहे तो सीजीएल हो, चाहे तो एक्साइज हो, चाहे तो लैब असिस्टेंट सारा, और दूसरा बात और उसके बाद सीबीआई जांच हो और वो 90 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट दे, इससे ज्यादा
1: प्रतिरोध कैसे दूर होगा अपना। आप लोग एक कदम पीछे हटने को तैयार है और सरकार भी अपने स्टैंड पे फर्म है, जेपीएससी वगैरह तो रद्द कर रही है, रिफॉर्म्स के लिए कमिटी बना रही है टेक्निकल एक्सपर्ट का, लेकिन अगर आगे पीछे नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या ये ऐसे ही चलते रहेगा?
2: देखिए, लोकतंत्र में दो रास्ते होते हैं, दो दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा आपका है अहिंसात्मक रूप से, जो किसी प्रकार का विरोध हो तो पूरा विरोध आप आंदोलन कर सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरा जो ये आपका है रास्ता है कि वो संवाद का रास्ता है, क्योंकि सरकार हमारी, भले कई लोग होते हैं जो अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, लेकिन एक बार जब सरकार बन जाती है तो सरकार सभी उस स्टेट के या उस देश के वो फिर गार्जियन होते हैं, वो कस्टोडियन होते हैं, उनके बच्चे एक तरह से बोलिए वो होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा संवाद का यदि अभाव हो रहा है तो संवाद पुनः उसी स्पीड से।
0: सुनिए,
3: Pratul Shadio, Chief Spokesperson, Jharkhand BJP, Saral Patel, National Spokesperson, Congress, Dheeraj Dubey, Spokesperson, JMM. I'd like to give all of you 2 minutes time to put your party's point of view forward. And I'd like to begin with Dheeraj Dubey. Dheeraj Dubey ji, कब तक सरकार जो इन स्टूडेंट्स की मांगे हैं उनको नहीं देखेगी? क्योंकि जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं बहुत सारे, कभी तो आपको सुनना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, कब तक अनदेखा करेंगे?
4: मैम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के उस युवा की ही बात को हम लोग ले लेते हैं जिसने अभी कहा कि संवाद एक माध्यम होना चाहिए टू कम्युनिकेट, लेकिन संवाद तीन बार डेलीगेट और स्टूडेंट डेलीगेट और गवर्नमेंट डेलीगेट के बीच संवाद करने का प्रयास किया गया, उस संवाद का नतीजा इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, वो चाहती है कि जो कुकर्म, जो गुनाह जंतर मंतर पर हुआ वो झारखंड के आंदोलन से ढका जा सकता है, इसका नैरेटिव फैला के हम इसको कवर अप कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में आंदोलन खत्म हो। जो एसएससी सीजीएल की बात हो रही है रद्द करने की, वो हाई कोर्ट का मामला है, उस हाई कोर्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट जब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक हाई कोर्ट में ये अपील भी नहीं किया जा सकता कि आप इसको रद्द कर दीजिए। बाकी सीबीआई का मामला है, सीबीआई के मामले में हम जाकर पुनः 23 साल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं जैसा जेपीएससी 1 और 2 के सीबीआई जांच में चल रहा है, अभी तक जांच चल रहा है और उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो हमने 90 दिनों में सीआईडी जांच करने की बात कही है, 90 दिनों में सीआईडी जांच कराकर हम दोषियों को सख्त सजा देंगे ताकि उनके साथ पुश्ते याद रखें, और उसके बाद अगर संतुष्ट फिर भी लोग नहीं होते हैं तो सीआईडी जांच के अलावा न्यायिक जांच, सीबीआई जांच, एफबीआई, अमेरिका के भी जांच एजेंसी से कराया जा सकता है, वही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रहेगा। लोगों का आंदोलन करने का हक है, भूख हड़ताल करने का हक है, इस सरकार को बात को माननी चाहिए। लेकिन यहाँ जो 7 साल से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है उसको एक संजीवनी मिला हुआ है कि चलिए युवाओं के बहाने ही लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, सरकार को बदनाम की जाए और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है झारखंड को बदनाम किया जाए। अभी एक विधेयक पास किया गया है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026, 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होने जा रहा है झारखंड को, और ये युवाओं के आंदोलन के तले जो है इसको चुपके से इन्होंने पारित कर दिया है। अब इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन करने जा रही है।
3: पर धीरज जी, आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई एक पार्टी है जो बीजेपी की तरफ आप बोल रहे हैं कि वो इनके कंधों का सहारा लेकर स्कोर सेटल करना चाह रही है, बट धीरज जी जो डिमांड अभी है स्टूडेंट्स की वही डिमांड पहले भी थी, डिमांड नहीं बदली है
4: मैडम। कई मांगे थी जिसको सरकार ने मांग लिया, टीडीपीएल से जितनी भी परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की बात हुई, उसको मान लिया गया है, जो भी जेपीएस

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हो सकता है,
1: पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता।
2: On one side is आवारापन टू, a sequel bringing back Imran Hashmi nearly two decades after the original.
0: एक एक करके मरोगे या सब साथ में?
2: On the other is Sunny Deol's Batwara 1947.
3: आदमी होता है
4: तो उस्ताद को नहीं जानता
5: और तू मेरे बाप को नहीं जानता।
2: A partition drama that reunites the actor with Preeti Zinta and filmmaker Rajkumar Santoshi.

0: 2.8 crore devotees. A sacred journey, a city overwhelmed. The Kavad Yatra has ended in Haridwar, but leaves a trail of waste. Almost 7,000 metric tons of garbage were collected during the Kavad Mela, and 2,000 tons came in just the final 2 days. The civic body deployed 1,000 extra Swachhta Doots and more than 80 vehicles, yet the garbage kept piling up. A pilgrimage built around the Ganga. Faith and Lord Shiva, but devotion cannot mean disrespecting the sacred city.
1: मैं अभी तक जो अनुमानित कूड़ा है 30 तारीख से कल तक का अगर हम लोग देखें जो पूरा कावड़ का अवधि था तो 7,000 मेट्रिक टन कूड़ा टोटल निकला है और अगर जो शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको डिटेक्ट कर दिया जाए तो 4 से 4,500 मेट्रिक टन जो है कूड़ा वो एक्स्ट्रा कूड़ा जो है कावड़ के दौरान हमारा लक्ष्य यही है कि आज पूरा साफ हो जाए और बट अगले कुछ दिन भी हमारा

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: 4.8 crore devotees. A sacred journey, a city overwhelmed. The Kavad Yatra has ended in Haridwar, but leaves a trail of waste. Almost 7,000 metric tons of garbage were collected during the Kavad Mela, and 2,000 tons came in just the final 2 days. The civic body deployed 1,000 extra Swachhta Doots and more than 80 vehicles. Yet the garbage kept piling up. A pilgrimage built around the Ganga. Faith and Lord Shiva, but devotion cannot mean disrespecting the sacred city.
1: नहीं अभी तक जो अनुमानित कूड़ा है 30 तारीख से कल तक का अगर हम लोग देखें जो पूरा कावड़ का अवधि था तो 7,000 मेट्रिक टन कूड़ा टोटल निकला है और अगर जो शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको डिडक्ट कर दिया जाए तो 4 से 4,500 मेट्रिक टन जो है कूड़ा वो एक्स्ट्रा कूड़ा जो है कावड़ के दौरान हमारा लक्ष्य यही है कि आज पूरा साफ हो जाए और अगले कुछ दिन भी हमारी जो एक्स्ट्रा टीम लगी हुई है वो लगी रहेंगी और पूरा साफ कर दिया जाएगा.
0: And then came these disturbing visuals from Har Ki Pauri. Bottles found inside changing rooms, some allegedly filled with urine and abandoned. The visuals